इला लागरी रोला योजना गदी कार्यान्वयन लाबरी रु लबा हिन्बा याकुब पाँचो धेला सोडा थेत बासेलमा एन्नी गदी रंग रंगसी लबा पाप गदे गिक सेन गिक्दा पाङ्गो ओछे एनी गदी खम्बाला लागेरी गिक सेन गिक्दा प्रार्थना लौ च्यागो परमेश्वर जी मन्द अनुसार ब्रब मिसे लब प्रार्थना शक्तिशाली तमुला ओछे थेग्याम उद्देगला गे तमुला जब यङ यीशु ख्रीष्ट ज्ञान परमेश्वर से यङदा पिनबा अधिकार गोला तब यङ सन्दोदा ज्ञान छुटकारा पिनबरी हमला यङ थेनी गदेर लागि प्रार्थना लला थेन्दे थेनी गदेला व्यक्तिगत आवश्यकता कदेला लागिरी मध्यस्थता लबरी फिरी ज्ञान परमेश्वरला शक्तिदा सञ्चालन लला एफिसी छ अध्याय 18 थेत बासुलमा परमेश्वरला आत्मज्ञान एनी गदेसे सदन जम्मन सेला लागि प्रार्थना लौ चुरङ लसिन जम्मन परमेश्वरला निगदेला लागि नन सदन जनसी प्रार्थना लौ परमेश्वर से ख्रीष्ट लस शरीरी मुब बेनन द हाइम दमन प्रार्थना लबरी अनुरोध लावन मुसुला यंग से आत्मरी प्रार्थना लदोला चुला अर्थ लग्यम यंग द पिनबा आत्मिक ज्ञान दिन बुद्धिगम यंग से प्राप्त लबा धम गदेला लागिरी प्रार्थना लबा हिन्बा पहाड़ी दारला अर्को महत्वपूर्ण गुण विवा सन्दोदा प्रोत्साहन लबा हिन्बा हिब्रू 10 अध्यायला 24 यंगसे गिक सेन गिक्दा माया लबदेन जब गेलावर लागरी आड खबा खाला तमजे लै जब यंग हलाइदा जब गेलावा म्रांगुला यंगसे थेदा पंगदोला चुसे थेदा परमेश्वरबा तम्बा सोसेला लुई बिताउला थप चासु पिन्ना फिलिमोन 1 अध्यायला 7 नला आले एला माया सिंह लानन तंसी आड यंग बमुला तिक दबिसम एसे लामा परमेश्वरला निगदेदा सेम दोषी टाङ्गमुला तिनी नुन पहरेदार दोबरी मैगो एक अर्काला लागिरी प्रार्थना लसुगो तिगला लागि प्रार्थना लसे लसेला विवाह बारी पवित्र आत्मज्ञान परमेश्वरला निर्देशन यानगो प्रार्थना लामा सन्दोद प्रोत्साहन पिन्ना प्रार्थना लामा सन्दोद प्रोत्साहन पिन्बा तरिका से एन मैगो जब यङ जाग तिसी हाइम दमन रामोला ख्रिस्टला शरीर बाङ्म ताबा थेन्दे बेननला फाइदा तला आमेन प्रभावशाली बाइबल शिक्षक सोवन विक्टर यम लिखित सन्देश याङला भाषारी न्यन्सुजी कार्यक्रम स्पार्क माई फेथ कार्यक्रमला बारेरी रङला केही प्रतिक्रिया मुसम 98685353 हस्त त्यो समय रिङ बिदा दाजी रङ्गी छङ्मदानु जय मसी नमस्कार।

0: लो बजेट में बनने भिडियो होने ये मोडल सोडल हाला भाग राो हो
1: मोडल बस।